भुलाने में जिनको जमाने लगे हैं, भुलाने में जिनको जमाने लगे हैं, वही अब मुझे याद आने लगे हैं, वही अब मुझे